0: से ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब।
1: Are you chanting?